0: Friday, September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत देती उम्मीद कर रहा इस बार भी कुछ आशीर्वाद दोगे
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए बाहच बाहपा मैं आ जा तो मैं नाल नचिए
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 647-448-1000.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते।
1: हो जे एजेड ड्राइवर तुहानू है लगातार काम ते वधिया पेमेंट दी पाल ता डकार लॉजिस्टिक दे रहा है ज्यादा काम दे मौके ते वधिया पे पैकेज खूबसूरत माहौल विच कंपीटेटिव सैलरी ते इंश्योरेंस भी नाल स्टेबिलिटी अते वधिया माहौल विच काम करन दा मौका। वधेरे जानकारी ले डकार लॉजिस्टिक नू कॉल करो 437-242-3158। दुनिया विच किते भी घूमन फिरन लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 2 लोकेशन तो अपनिया सेवावां प्रदान करदे ने 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा, सेकंड लोकेशन 4550 एबनेजर रोड ब्रैम्पटन।
2: Stargate Logistics North America di one of the fastest growing company hire kar rahe ne AZ drivers jekar tuhanu vi hai kam di pal ta ajj hi sampark karo Stargate Logistics de naal work locally ya cross border serve karde ne GTA Midwest Montreal te North America de vich Stargate Logistics ajj hi call karo 905-564-9292 905-564-9292।
1: ओ जी हुण तुसी भी देर ना लगाओ ग्रीन वैली सुपरमार्केट आओ सुपर डील्स दे नाल ग्रोसरी ते डॉलर बचाओ। वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स मीट चिल्ड बियर डाइन इन ते टेक आउट भी कर सकते हो। देर रात तक हफ्ते दे सत्तो दिन खुलता है। तंदूरी बाइट चाट एक्सप्रेस विच बैठ के वधिया स्वादले फूड दा मजा उठाओ। वधेरे जानकारी ते ऑर्डर लई कॉल कमाओ 905-913-1666 905-913-1666 या पहुंचो 11665 मैकवीन ड्राइव मेफील्ड दे नुक करते।
3: आज खुश तो बात हो गई था।
4: ओ ता होना ही है जदों तिनो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे तैन लगता बनदा ही है।
3: आज मेरे पास बिल्ड है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है
4: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा है
5: चल क्या रहे यहां पर
4: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
4: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा
7: वेलकम टू विरासत रेडियो बरियाल दी गुरमत सिंह बारी साहब नाल गलबात करी। मैं वह US डीजल की जी है खबर जी है फिनिश कर देव फिर बारी साहब लाइन से लैके आवेंगे खबर की सांझ पाएंगे। US डीजल प्राइस हिट रैकड हाई $5.85 क्या बात है। यूनाइटेड स्टेट्स में डीजल की एवरेज कीमत वध के रैकड में पहुँच गई हैगी है। US के $5.85 पर गैलन हो गई है। ईरान इंटरनेशनल फ्यूल सप्लाई में डिसरप्शन इस वाधे के मुख्य कारण हैं ये दसे जा रहे हैं। ये शुरू किन किए थे ये भी पता कर लियो। पहले तो सब कुछ चल रहा था ना फरवरी में ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने तो पहला डीजल लगभग $3.76 पर गैलन से उस समय की कीमत लगभग 55% या $2 तो वध पर गैलन बढ़ चुकी है। क्या बात है। अमेरिका में डीजल का स्टॉक बहुत घट गया है। अगस्त की इनवेंटरी लैवल उस महीने महीने लिए 1982 तो बाद सब तो घट दसिया जा रहा है। सो लैवल बहुत घट गया स्टॉक बहुत घट गई है तो वेनेजुएला का ऑयल खिंचने की कोशिश करते हैं। तो मोहरे हार्वेस्ट सीजन आ गया क्योंकि जड़िया फसल बढ़िया जानिया तो सर्दियों तो पहला ऑयल की डिमांड भी बढ़ जाती हैगी डीजल होर महंगा हो सकता है। लो जी साढ़े नाल जुड़ गए हैं गुरमुख सिंह बारी साहब खबर लैके आएंगे। बारी साहब सत श्री अकाल जी जी आया प्रोग्राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: आवाज हर रोज सवेरे 9 तो 10 बजे तक पंजाब की मिट्टी की खुशबू बिखेर दी आवाज डील्स ऑफर्स गीत संगीत पेश कर दी आवाज तुहाडी निखर दी सवेर नो सजरी सवेर बनाउंदी आवाज ये है रेडियो आवाज हर रोज सवेरे 9 तो 10 बजे तक रेडियो आवाज
1: All advertisements are paid. Awaz the Voice does not take any responsibility for any paid advertisements during this program.

आज खूबसूरत मेरा खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्कन सिया चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो आप सब दा हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार चढ़ती कला वाला निरपो निरवैर के नाल नाल असीं हमेशा कहने हुंदे कि रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसीं चलदे रहोगे यानी कि नवी चीज़ा जिंदगी चाहदियाँ रहनगियां उन्होंने अक्सैप्ट करते रहोगे दुख और सुख दोनों के जल अवस्था ही हो जाऊगी कि आनंद पाया मेरी माए सतगुर मैं पाया तकलीफा दुख बहुत कुछ जो आस पास है वो खत्म हो जाता है। खत्म किदा होंदा आनंद की अवस्था ही ऐसी है कि आनंद तो चरखड़िया भी आया शहादतों पर भी आया जन्म मरम के दुखा चो कटे जाने भी आया तो आनंद की अवस्था च बाबा दीप सिंह भी रहे आनंद की अवस्था च मरजीवड़े शहीद सिंह जिन्हें धर्महित सीज उत्ते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लहाइया चरखचड़िया चढ़े आरिया ना तन चरवाए बंद बंद कटवाए मावां ने बच्चों खुशी खुशी आनंद की अवस्था च झूलिया च पाया। तो हमेशा मैं सब तो वड्डी गल कहना हुंना देख के अणजठ कीता देख लेना किसी चीज़ नूं फिर उन्होंने अणजठ कर देना भी मैं तो देखिया ही नहीं है मेरा बच्चा मेरे सामने मार दिता औरंगजेब के सिपाहियों ने तो हुण उहदे टुकड़े टुकड़े करके मेरी झोली उड़ा के मेरी झोली च पा रहे ने ताज मैं अंतम संस्कार कर सकां। ये माहौल रहे ने ये इतिहास नहीं है कि 4000 साल पहला फलाना आया सी उन्हें फलाने नूं ऐ मारता सी गल दा पतंगड़ नहीं है इतिहास है कि थोड़ी चौथी या पंजवीं पीढ़ी उन्हां दे विचों हो सकती है जिहड़े शहादतां पा गए। सो अज इस शो दे विच इक वार फिर तो चढ़दी कला मतलब चढ़दी कला कोई डर नहीं कोई भाव नहीं है चढ़दी कला नानक दाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा पलाण।

0: नानक कामण सदा सुहागण। हे नानक, ओह रूप प्रभु परमेश्वर ना मिल जाते, जन्म मरण के दुखों के विचों कटी जाते। मिल मेरे प्रीतम जियो तुद बिन खरी नमाणी। हे परमेश्वर, तेरे तो बिना मेरी नमाणी रूह है जड़ी, वह बिलक रही है, वह तरस रही है, तेरे मूँह च तेरे प्यार च नहीं, वह तेनों आनंद की अवस्था के याद कर रही हैगी है। एडवांस सुन रहे हो और एक बार फिर तो चढ़ती कला के एक नवे दिन की शुरुआत हो चुकी है। माड़े मोटे तो चलते ही रहते होंगे ने, कोई चक्कर ही नहीं गा। नॉर्मल जी लाइफ जीए तो फिर की जीए, माड़ा मोटा तो चलता भी रहना चाहिए होंगे। तो एक बार फिर तो चलिए सफर के वाल जो बहुत खूबसूरत पर थोड़े साथ 905-600-7733 संधि, जिते चलेंगा चलूंगी नाल तेरे टिकटा दो ले ली। हो सकता बहुत सारे लोगों ने मेरी आवाज़ पॉजिटिविटी दी हो, सकता बहुत सारे लोगों ने आवाज़ पसंद भी ना हो, सकता ना पसंद होने के बावजूद भी सुन रहे होवो, इनू कृपा कहें। तो मैं गलियां का रूड़ा कूड़ा मेरे साहिब दियां वडियाईयां, कुछ नहीं पल्ले, कुकर्मा नाल पापा नाल तबाहियां नाल भरी हुई है जिंदगी है। मैं गलियां का रोड़ा कूड़ा, कूड़ा ही हाँ सड़कों का सी, गलियां का कूड़ा मेरे साहिब दियां वडियाईयां। उस सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा जदों हुंदी है, तनके जिन्नी कदर ना मेरी, कोई नहीं जानदा, कोई बात ना पूछे मेरा जीव, है ना। सो है ही नहीं कुछ साढ़े पल्ले, अज मैनू कुछ भी नहीं पता की हो रहा मेरे कंट्रोल से, मैं लगता कि मैं करता पाया, मैनू नहीं पता अगले क्षण की होना है। हाजी तिनके जिनी कदर ना मेरी, मैंने तख्त बिठाया साइया, इन्ने लोग इज्जत नवाज रहे ने फिर भी इन कमिया के बावजूद, तो तख्त बिठाया होंगे कि तुम अपने लिए जड़ा दूसर च इज्जत देखते हो कि थोड़ी रिस्पैक्ट करते हैं, उन्होंने कहें तख्त बिठाया साइया। जे वेखा मैं अमलों वल तो अपने कमां वल देखा तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल तो बल्ले ही बल्ले बल्ले, भी तेरी कृपा ही है, बल्ले बल्ले है तेरी परमात्मा, शुक्र है तेरा कि परदे ढके हुए हैं। सो एक बार फिर तो चलिए शो के जिते सा शामिल होने जा रहे, 905-600-7733 स्टूडियो नंबर, और सब तो पहला रखड़ी अज भैणा ते भरावां दे प्यार दा प्रतीक, एक त्यौहार एक शगन दे तौर दे उत्ते है। ये प्यार दिलां च हुंदे ने, मनां दे विच खोट ने ते हत्थां ते धागे ने, गल्लां नहीं बणदियां। गल्लां ते ये ने कि रोज़ ही रखड़ी होवे ते रोज़ ही फादर्स डे होवे, रोज़ ही मदर्स डे होवे, भावें तुसीं लख एक दूसरे नाल नाराज हो किसी गल तों, ते जिहड़ा प्यार है तुहाडा, थोड़ी सद्भावना एक दूसरे लिए उदा ही बनी रहे। कुछ खबर ने जिन्हों के उपर मैं जिक्र करूँगा, टैरिफ के उपर कुछ नवे अपडेट, जिथे अमेरिका किस करबट बैठ रहा है। कल श्री डोनल्ड ट्रंप साहब ने नक्शा चक्या तो लिखता हूँ कल तो जी ये लेक ओंटारियो जी है वह अमेरिका का खनिकड़ी लेक लुक बन जो ना वो होजूगा। मामा हीर दिया 2600 साल पुरानी लेक का ना चलता आ रहा, ओंटेरियो का नाम बाद चु पिया, लेक का नाम पहला पिया हो, अमेरिका बनन तो पहला दी लेक है। कल कैनेडा कैनेडा ना लिखती, अमेरिका ना लिखती कागज उत्ते। मैनू यह डर लगता कल किसी होर कंट्री ना लिखते हुए रूस भी हम अमेरिका ही आना ऑर्डर पास करता, कारण ही कहता ये ऑर्डर उन्हें अपने लिए पास किया है खुद ली। वी डोंट गिव डैम, प्राइम मिनिस्टर कारनी कहता ये जो मर्जी लिखी चले कागज के टुकड़े से सानू की फर्क है, लैट हिम राइट डाउन। एक बच्चा कागज से कुछ लिख रहा तो उन्होंने ऑर्डर करके पास कर रहा तो वो अपने आप ही कर रहा, असी नहीं मानते इन। फिलहाल बहुत सारी गल्ला बात होर, पर इस समय जो टफ टाइम है मुल्क के लिए, मुल्क दिया कोई भी चीज़ा थोड़ा ना पसंद ने ना, उन्होंने इग्नोर करके पसंद तौर के उत्ते लैके चलो। मोहन भागवत के वीजे की गल चल रही है, वो डिस्कशन जी प्राइम टाइम के मेन स्ट्रीम चल रही थी, उपर भी गल करूँगा थोड़ी जी गल होर। पर पहला फ्रैश क्रॉसी डिपू कहता कि आ जाओ अज, क्यों भाई जी आने?
1: हाँ जी अमन भाजी सत श्रीकाल और सारे
0: भाई
1: सत श्रीकाल जी। सो बिल्कुल जी, रखड़ी दिया सारे नू बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक फ्रैश ग्रोसरी डिपो वालों। जे तुसी हजे भी रखड़ियां बायआउट करने वास्ते सोचते पे हो तो दो लोकेशन है जी सर्व करने वास्ते ब्रैम्पटन दे विच, और बहुत ही वधिया वधिया डिजाइन आए है जेडे कि 99 सेंट तो लैके शुरू हो जाते हैं जी, और बहुत ज्यादा रेंज दे विच नहीं है, प्राइस बड़े रीजनेबल आए ने, पर डिजाइन देख के थोनू वधिया लगूगा, गुट ते रखड़ी बनी वीरे दे भी बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 31 ਸਟੀਪਲ ਬੁਸ਼ ਐਵਨਿਊ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੰਡਾ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा दो में नाल नचिए नचिए बाहच बाहपा वे आ जा दो में नाल नचिए।
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 6474481000.

तबले वाला बंदा पाकिस्तान तो आ रहा स्पेशल भाई वास्ते और रिदम दे इदा दे मुंडे आ रहे हैं तुसी सुन के हैरान होवोगे जेडे के टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड लेवल दे मजीशियन ओ आ रहे हैं। तबले वाला मुंडा मेनू मैं याद भुल जांदा किदे नालो तबला उन्होंने बजाया है और जिस वे तबला उथे खड़ के ना रिदम दे उत्ते जेड़ा मुंडे ने पाइया फिर धमालां पूरियां ते देखियो फिर तुहानू नचण वास्ते ऑटोमैटिकली मजबूर कर देगा। हंस राज हंस दियां कवालियां ते राती इश्के दी होई बरसात ते हरजीत जी सारी रात भिजदे रहे।

मैं थैंक यू करना चाहना साडे जिहड़े टाइटल स्पॉन्सर बने ए टू जी किचन कैपिटल ले लक्की भाजी ने। बई वाह लक्की भाजी कहते हरजीत जी जो मेरा विआह होया सी उदो हंसराज हंस जी आए सी। मैं क्या कमाल की गल सानू नहीं सद्या उदो तुसी। मैं हैरान हो गया कहिंदे लक्की भाजी कहिंदे मैं तां ए शो जरूर देखना क्योंकि मैं अपने विआह दे हंसराज हंसी नूं सद्या सी। कहिंदे मैनूं तां अपने विआह दे पुराने दिन चेते आ जाणगे जदों मैं हंसराज हंस नूं सुनूंगा। जे तुसीं वी शो नूं स्पॉन्सर करना ते कॉल मैनूं कर सकदे आ। की पता तुहाडे विआह ते वी आया होवे हंसराज हंस, जिन्हां दे विआह ते आया वो कर लो स्पॉन्सर, नाले मैं मिलाप वी दऊं नाले तुहाडियां फोटोआं वी खिचा दूं हंसराज हंस दे नाल। होर दसो की चाहीदा। 6474481000 मास्टर ज्यूलर वालों भी प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है और मास्टर ज्यूलर वाले भी हंसराज हंस के शो को स्पॉन्सर कर रहे हैं। सैलूलर पॉइंट 60-65 स्टोर है इन्होंने सैलूलर पॉइंट के, वह भी हंसराज हंस के शो को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और होर भी साढ़े हरप गरेवाल साहब राइटर है होम लाइफ सिल्वर सिटी के, वह भी शो को स्पॉन्सर कर रहे हैं। रैब सिंह इस वे हॉट डीला लैके आता साडा कनेडियन जंपल मुंडा, वह भी साढ़े शो को स्पॉन्सर कर रहे हैं। जे तुम भी शो को स्पॉन्सर करना तो थोड़े को हूँ समा है तो तुम स्पॉन्सर कर सकते हैं। नाले तुम मीट एंड ग्रीट से मिले हंसराजा नाले थोड़े ना फोटो खिचावे नाले हंस भाजी थोड़े ना डिनर करे नाले दारू शारू पीओ। हंस भाजी बिल्कुल नहीं दारू पीते इस गल तो बच के। और अज का प्रोग्राम स्पैशल तौर पर असं ए टू जी किचन कैबिनेट वालों स्पॉन्सर कर रहे हैं। दो लोकेशन थोड़ी सेवा च हाजिर है ए टू जी किचन कैबिनेट वाले की, एक नैगरा फॉल फैक्टरी है एक इन्हों की ब्रैम्पटन फैक्टरी है। जे तुम कोई भी किचन कैबिनेट का काम करवा ए टू जी किचन कैबिनेट में कॉल करो लक्की बादशाह जी को बल्ले बादशाह साहब 416-720-7073। पर इन्हों के फोन बिजी होंगे है जो सवेरे करो फोन शाम को फोन कर दे मैं तो उस वेले कर लेंगे फोन जिन्होंने किचन कैबिनेट तैयार करवानी है। 416-720-7073 से कॉल की जा सकती है। ए टू जी किचन कैबिनेट वाले शो को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हंस भाजी अज फ्राइडे है, अज बहुत बैंकट हॉलों के विच तुहाडे गाने वजने हैं क्योंकि पिछे करके एमी विरक साहब का शो है वह भी हंसराज हंस के गीत गा रहे सी।

0: 9082895 4508288
1: जी। बड़ी मेहरबानी सुल्तान जी। और किन्ने बजे तक आज स्टोर खुलिया जी शाम तक जी?
0: सुबह 11 बजे तो शाम 7 बजे तक 7 days a week स्टोर खुलता है जी। ऐ तो बहुत इम्पोर्टेंट वीकेंड है क्योंकि लेबर डे वीकेंड है, बैक टू स्कूल वीकेंड है। सो सत्ते दिन ही तुसी 11 बजे तो लाके 7 बजे तक पहुंच सकते हो। बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन ते पेमेंट 6 महीने की करनी है
1: जी।
0: डिलीवरी भी सानू फ्री मिल जानी जी। 9054508288 नंबर है। 9054502828।
1: बड़ी मेहरबानी सुल्तान जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम पंजाबी विरसा। गुरु जी गुरु जी गुरु जी कहाँ रहते हो आप?
2: नमस्ते नमस्ते भैया।
1: आपको हम ढूंढ रहे हैं, हम आपके पीछे पीछे जा रहे हैं, गुरु जी आ नहीं रहे। आपकी हमें जरूरत है, आप इतना दिन मत लगाया करो प्लीज।
2: यस यस यस यस भैया, बहुत थोड़ा बिजी बिजी होता है इसलिए अभी सब हो गया
1: जी। बोलिए, आज फ्राइडे है और क्योंकि आज वीकेंड की शुरुआत हो गई है, बहुत लॉन्ग वीकेंड है, बहुत लोग आपके पास आएंगे, बहुत लोगों के इश्यू होते हैं गुरु जी। और आप एवरी वीक जो हाजिरी रेडियो पे जरूर लगवाया करें जी। सर
2: थैंक यू जी। मैं ये हाप बहुत मेहरबानी है मुझे वो लेने के लिए
1: जी।
2: क्या भैया, मैं आयुर्वेदिक एंड वैद्य कर रहा है पिछले 9 generation से। आजकल से मेरा पापा, मेरा दादा, मेरा प्रदादा सारा यही काम कर रहा है, आयुर्वेदिक वैद्य है।
1: ठीक है।
2: अभी अभी अभी हमको फैमिली डॉक्टर कैसा होता है वैसा राजा महाराजा को भी फैमिली वैद्य होता है, वैसा मेरा लोग, मेरा पापा लोग वैसा वैद्य है। ये सारा मैं वैद्य करता है, हमारा 5000 years का आयुर्वेदिक का अभी तक सेम लेकर आ रहा है मेरे जनरेशन से।
1: जी जी।
2: सारा इलाज मेरे साथ क्या हुआ, कैसा होता है, हिमालय जाके उधर से जड़ी बूटियां, पेड़ों से ऊपर, पर्वतों के ऊपर से जड़ी बूटियां, रेड रेड जड़ी बूटियां लेकर आके उसको प्रोसेस करके उससे हम दवा देता है लोगों को।
1: ठीक है।
2: नाड़ी परिशोधन करता, नाड़ी का मतलब हमारा नबस बोलता है, नबस देखता है।
1: अच्छा।
2: नबस देख के नबस में वाता पित्त कफ दोष रहता है।
1: आपका मतलब गुरुजी ये है कि हम नबस देख के बता देते हैं बंदे को प्रॉब्लम क्या है?
2: यस भैया नमस्ते। प्रॉब्लम क्या है वो बता करता है, क्योंकि भैया हमारा बॉडी में 3 दोष होता है। हमारा ऊपर का कफा होता है, मिडिल में पित्ता होता है, नीचे का वाता होता है। ये भी वाता पित्ता कफा दोष होता है। इसका मेन कारण क्या होता है, हमारा पेट को अंदर एसिडिटी गैस बन जाके ये गैस से डाइजेशन नहीं होता है, फैटी लिवर हो जाता है, शुगर पैंक्रियास हो जाता है, इसके लिए होता है गैस के लिए, एसिड के लिए एंड मेन आर्थराइटिस के लिए। ये कंट्री में हमारा कनाडा में बहुत लोगों को आर्थराइटिस से सफर कर रहा है, लोअर बैक पेन से सफर कर रहा है, सायटिका के लिए सफर कर रहा है, नमनेस होता है पैरों में एंड सर्विकल नर्व्स को वो गर्दन में दर्द होता है, नेक में दर्द होता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कई वो दोनों हाथ ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, बैठने के उठने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, लिगमेंटिन कम होता है जॉइंट में, कॉटलेज लिगमेंटिन कम हो रखे और आर्थराइटिस, रोमाटिक आर्थराइटिस, ऑस्ट्रो आर्थराइटिस, गाउट हो जाता है। सारा को सारा हमारा पास हिमालयन हर्बल से दवा है
1: जी।
2: उसको बहुत लोग, आपको हमारा शो सुन के बहुत लोग आ गया, बहुत लोग ठीक हो गया था।
1: अच्छा, एक बात और गुरुजी, जो शुगर का बहुत इशू चल रहा है उसका क्या इलाज है आपके? कई लोग शुगर के इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत गोली खाते हैं शुगर की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
2: सुपर सुपर भैया, आप अच्छा क्वेश्चन किया था। शुगर के लिए भैया हमारा पैंक्रियास बिल्कुल खत्म होता है, पैंक्रियास में प्रॉब्लम हो जाए इसलिए शुगर बढ़ जाता है। मेरा दवा क्या होता है, शुगर अभी मेटफॉर्मिन, जेनेमेटो और इंसुलिन बहुत लोग डाल रहा है, मेरा दवा दे तो उसको बिल्कुल 1 week 10 days में ये सारा बंद करके हमारा दवा से 5-6 को अंदर बहुत लोगों को रीडिंग हो गया था। और 3 महीना को 5.5-6 को HbA1 हो गया था। सो मेरे पास वो शुगर के लिए बहुत अच्छा इलाज है। शुगर के लिए भैया, शुगर के लिए 2-3 प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है, मैं भी नोटिस किया था। एक यूरिन में प्रॉब्लम हो रहा है, शुगर लोगों को यूरिन बार बार आ रहा है, यूरिन नहीं रुकता है, नहीं कंट्रोल नहीं करता, यूरिन जाने के टाइम के पहले लीकेज आता है।
1: अच्छा।
2: यस, ये बहुत प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट भी होता है, प्रोस्टेट नहीं तो भी शुगर लोगों को यूरिन जाने के पहले बहुत लोग आ गया था
1: जी, जी।
2: उसको सारा को सारा ठीक किया था। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, नर्व्स में वीकनेस हो जाता है, बॉडी में

0: ताकत कम हो जाता है। शुगर लेवल को देखो भैया, बहुत टायर्डनेस हो जाता है, थोड़ा वो टाइम होने के टाइम में थक जाता है, काम करने के लिए दिल नहीं होता है। वैसा लोग भी मेरे पास बहुत लोग आ गए, बहुत लोगों को ठीक किया था।
1: ठीक है,
0: एक दो प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा इलाज मेरे पास है, इचिंग के लिए, सोरियासिस के लिए, बच्चा को लोगों को बहुत इच्छी होता है उसको लिए, एग्जिमा के लिए, 1 वीक को अंदर हमको रिजल्ट दिखेगा।
1: ठीक है,
0: बहुत लोग हमारे पास।
1: अच्छा, शुगर का इलाज हो गया, कई बार किसी को कोई कोलेस्ट्रॉल हाई किसी का होता है, उसका भी कोई आपके पास इलाज है कोलेस्ट्रॉल का?
0: यस भैया, कोलेस्ट्रॉल का हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारा ब्लड को पतला नहीं करता है, थिकनेस करता है।
1: अच्छा,
0: इसलिए ब्लड सर्कुलेशन कम करके हमारा उसके उससे हाथ में भी प्रॉब्लम हो जाता है। नर्व कोलेस्ट्रॉल ओनली हाथ के ऊपर नहीं भैया, बॉडी को सारा ब्लड में हो जाता है। किधर भी किधर ब्लड ब्लॉकेज हुए तो प्रॉब्लम हो जाता है, उसको लिवर में इफेक्ट।
1: नहीं, आप हमें प्लीज ऐसे नहीं, आप डराओ, प्रॉब्लम नहीं, हमें आपको पास आ जाना। आप कौन से नंबर पे हम आपको कॉल कर सकते हैं?
0: यस भैया, मेरे को एक ही नंबर भैया, 437-438-3399
1: नंबर
0: 437-438-3399 यही मेरा नंबर है।
1: एक बात और गुरुजी, जाने से पहले, अभी आपने शुगर का भी इलाज बता दिया, कोलेस्ट्रॉल का इलाज भी बता दिया, गाउट का भी इलाज आपने बता दिया, एक किसी को बवासीर हो तो उसका क्या इलाज है?
0: बवासीर को कम से कम मैं इधर 300-400 लोगों को ठीक किया था।
1: 400 लोगों को ठीक कर दिया आपने?
0: यस, इधर कनाडा में ब्रैम्पटन।
1: तो आप इधर ब्रैम्पटन में होते हो?
0: यस भैया, मेरे को 2 लोकेशन है, वीकली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्कारबरो में रहता है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ब्रैम्पटन में रहता है। बवासीर होता है भैया, हमारा कोलन को अंदर 9 तरफ बवासीर होता है, एक कॉन्स्टिपेशन होता है, एक हमारा वॉशरूम जाने के टाइम में जलन आता है, दर्द आता है, समटाइम ब्लड आ जाता है, समटाइम फिशर बाहर आ जाता है, समटाइम वो बैठने के टाइम में बहुत बहुत दर्द होता है, समटाइम बाहर आ जाता है, अंदर नहीं जाता है, वैसा 9 तरफ होता है बवासीर। ये 9 बवासीर को भी मैं ठीक किया था, 300-400 लोगों को ठीक किया था पिछले 6 महीने से, विदाउट ऑपरेशन। दर्द नहीं होता है, वो पेन नहीं है, ब्लड हो जाता है, बहुत लोगों को ठीक किया था भगवान।
1: आप कोई टीका टूका तो नहीं लगाते बंदे को?
0: टीका कुछ नहीं लगाता है।
1: अच्छा,
0: सारा दवा से ठीक हो जाता है, क्रीम देता है और वो जड़ी बूटी से देता है, जड़ी बूटी दे तो बिल्कुल ठीक हो रहा है।
1: ये जड़ी बूटी आप कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं?
0: यस, मैं हिमालय पर्वतों के ऊपर एंड केरला, असम, कुल्लू मनाली, वैसा मेन जगह को, फॉरेस्ट को अंदर मेरा टीम को साथ जाके उधर से जड़ी बूटियां लेकर आके उसको प्रोसेस करके वो उससे देता है। मेरा दवा, मेरा हेरबल्स में ओनली हेरबल्स रहता है, कुछ भी और नहीं रहता है।
1: बहुत अच्छी बात है। एक बार नंबर आपका, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत बिजी होते हो, नंबर एक बार गुरु जी दोबारा दे दे प्लीज।
0: यस भैया, और दूसरा बात भैया, मेरे को कंसल्टेशन फीस नहीं भैया, फ्री कंसल्टेशन।
1: अच्छा,
0: हम हमारा लोगों को लिए देखने के लिए, बात करने के लिए फीस नहीं लेता है, कोई भी हमारे पास आए तो वो पहले कंसल्ट करता है, आपको सेटिस्फेक्शन हुई तो दवा लेना, नहीं तो नो प्रॉब्लम, उसको मैं नहीं करता है। मेरा फोन नंबर एक ही नंबर है, 437-438-3399। आर्थराइटिस हो और बैक पेन हो, गर्दन में पेन हो, और फ्रोजन शोल्डर होता है, बैक में पेन होता है, बॉडी में वीकनेस होता है।
1: शुक्रिया आपका,
0: स्वेलिंग होता है आपको सारा।
1: 437 इसके आ गया, 438-3399। थैंक यू गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 437-438-3399 ते कॉल करो भाई। हेलो, लो जी अगली कॉल। हेलो,
2: हाँ जी, हरी जी, सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल भाई जी,
2: हरिंदर संधु बोल रहे जी।
1: हरिंदर जी, की हाल चाल है? ठीक हो?
2: ठीक है जी, ठीक है जी।
1: तुसी आना सी स्टूडियो, आज छुट्टी हो गई है?
2: मैरिज से जाना पै गया जी, मैं मैडम उधर अमन उधर गए ने।
1: अच्छा अच्छा, चलो कोई गल। हरिंदर जी, अपने वालों मैसेज दियो सारिया नूं, और इस 7 तरीक नूं तुहाडे वास्ते जिहड़ा कि मेला किरतियां दा हो रहा, उहदे बारे जानकारी दियो।
2: हां जी, वाइल्डवुड पार्क दे विच हो रहा जी, डेयरी ईस्ट ते 7 सितंबर नूं हो रहा जी, मंडे नूं। गुरमेल सिंह जी, सगू साहब, हर तरह दे
1: जी जी
2: ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ।
1: ਠੀਕ ਹੈ,
2: ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
1: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: आज खुश तो बात हो गया
3: था। ओ ता होना ही है जो तो टिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे ऐ नकदा बनदा ही है।
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
3: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा है?
4: क्यों कह रहे हो पर?
3: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com। होर कोई सेवा?
6: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
7: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
6: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
7: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
8: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
7: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
8: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
7: 416-509-1509
8: और विजिट insuranceforyou.ca।
9: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vichu, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sunu chahide ne. Jan to see visa services, Nepal de vichu, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna waji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
10: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
11: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
12: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निज्जर।

0: बस नहीं, जेंट्स में चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
1: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट,
0: फोर एंड अवनीजर के इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे वाले प्लाजा के बीच सिल्वर हट,
1: 6473393521,
0: 6473395121, 4525 अवनीजर रोड, ब्रैम्पटन,
1: सिल्वर हट।
2: जी दोस्तों, तुसी जुड़ चुके हो अपने मनपसंद प्रोग्राम सारंग दे विच, मैं तुहाडा दोस्त अते होस्ट जगजीत माहल, राजवीर बोपा राय जी भी कुछ समय तक लाइव ऑन लोकेशन करन पहुंचे हुए ने कि साडे नाल जुड़ जाणगे। अज शुक्रवार का दिन है, बड़ा ही खूबसूरत जिहा दिन हैगा, मौसम भी बड़ा अच्छा गा। असी परमात्मा अगे अरदास करदे हां कि यह शुक्रवार का दिन तुहाडे सारयां लई तंदरुस्तियां लैके आवे, खुशियां लैके आवे, एक चंगी सोच लैके आवे। यही असी दिलों सारंग दे टीम वालों पूरी वालों दुआ करते हैं। दोस्तों, जिंदगी विच असी हर रोज़ किसी ना किसी दौड़ विच भज्जे रहिंदे हाँ। कोई कमां वल भज रहा हैगा, कोई पैसे की दौड़ विच भज रहा हैगा, कोई सुपने नूं पूरा करन की दौड़ विच भज रहा हैगा। सो चंगा भी आ, भज्जना भी चाहीदा गा, पर आपां कई बार ना जिहड़े अपने आसे पासे कोई चीज़ां हुंदियां सी उन्हां नूं इग्नोर कर दिंदे हां। हमेशा किसी की हैल्प कराया करो, जे कोई तुहानूं लोड़वंद दिसदा गा ते किसी की आपां पढ़ाई दे विच मदद कर सकदे हां, किसी नूं फाइनैंशियल तौर ते मदद कर सकदे हां। सो इदां दीआं खुशियां भी लभदे रहा करो। सो अज असी बेशक गड्डी चला रहे हो, तुसीं बेशक तुसीं अपने घर दे विच हो, तां अपने पालों सिर्फ एक गल जरूर कहना, जो कुछ मेरे कोल है मैं उस विच शुक्रगुजार हाँ, ते जो कुछ हासिल करना है उस लई मैं अज तो ही कोशिश करांगा। एक कोशिश ग्रैंड फर्नीचर ते भी हो रही है, अज दा शुक्रवार दा दिन है जिहड़ा ग्रैंड फर्नीचर तो साडा लाइव ऑन लोकेशन प्रोग्राम हो रहा है, उत्थे तुहाडा शुक्रवार इन्ना क ज़्यादा वधिया बनन वाला गा कि तुसीं सोचा भी नहीं होना। मैं कोशिश करदा राजवीर जी नूं लाइन ते लैण दी, जे राजवीर जी पहुंच गए होणगे। राजवीर जी सति श्री अकाल, पहुंच चुके हो जी?
3: सत श्री अकाल भाई जी, सत श्री अकाल, आवाज ठीक पहुंच रही है
2: जी? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी जी।
3: मैं तां लाइन ते ही हां भाई जी, मैं तां हमेशा लाइन ते रहण दी कोशिश करदा
2: जी।
3: जिन्ना चिर बंदा लाइन ते रहे ते चंगा रहिंदा, ठीक रहिंदा
2: जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, तुसीं बड़े जिम्मेवार बंदे हो जी, तुसीं लाइन तों कदे भटकी नहीं सकदे।
3: बेड लिया, सोफा लिया
4: जी,
3: नाल जिहड़ी इन्होंने कोई चीज खास तौर ते गिफ्ट दी कही ओह भी मिल गई
4: जी।
3: सो बागों बाग है
4: जी,
3: अज पहली डील है जिहड़ी 685 तम करोड़ तो
4: जोरा। बिल्कुल
3: ਆ ਜਿਓ ਬਾਜੀ, ਬਸ ਕਰਾਂ ਆ ਚੱਕੋ, ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੀਟ ਵਾਲਾ।

0: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकदे ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
3: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स। बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सुबह 10 बजे शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट। मजा लवो संडे नु पराठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूसडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा। ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते। डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल। कॉल एट 905-794-8111। सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली

0: 6500 जी वेलकम
1: जी।
0: हां जी
1: मतलब ये तो लगता जी बल मतलब जो अपना कहते हैं कि जोर ओने बारे ना क्या हो गए
0: जोर नु कहा गड्डा खिचना उसे हद हो गई यार प्रोफेसर पंजाबी लहरा आ पंजाबी साड़ी हजे कहिंदा जी पंजाबी पढ़िया करो पंजाबी सुनाया करो वल दा मतलब नहीं दस सकिया बंदा यार की करिया जावे रब। 2825 कहिंदे वल जोर जोर दसना वाह बल्ले तेरे भरावा आ ता भाई खिचता काटा वल दसना जल्दी करो हाल तुसी दसो ना की है।
1: हाँ जी ठीक है भाजी बहुत वधिया गाना लाया बहुत वधिया फ्राइडे भी है गुड हो गया।
0: हाँ
1: वल दा मतलब मैं जेड़ा समझदा आ भी तरीका जगत कोई ढंग कह सकदे आ हना।
0: अच्छा चलो ठीक है देख लेने आ कुछ कुछ ओ भाई जी जेड़े कहंदे जोर जोर दसना झटका लाउणा कोई ओना बारे भी दसो। चलो एक और कॉल लेने आ 8198 जी वेलकम 8398 हेलो हेलो हेलो सत श्रीकाल कौन बोल दो
2: मैं सतनाम बोल रहा गुस्से तो।
0: अच्छा गुस्से वाले की हाल है
2: जागत दस गए हूं दसना पैना मैं कहना।
0: अच्छा चलो मैं भी दस
2: दूसरी साडे तो बड़े है जी।
0: थैंक यू इन्ने भी इन्ने वे भी जिन्ने कही जाने ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ 905-673-33-37 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ 7220 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
3: ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 96 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ।
0: ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
3: ਨਵੀਂ
0: ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਹੈ।
3: ਤਰੀਕਾ
0: ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ
3: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ

किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। इस गीत नाल टुकदा शेर है, बड़ा खूबसूरत, किसी सज्जन ने भेजा, कहिंदा किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं।